0: काफी अनुतुनाय दशमा पहा अनुतुनाय दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हांडे
1: विलाव पेरा उरे कोल हाई
2: विलाव ओपवेत गिन आवे
3: दोतराई ये पेरली करने एनएलबी मेगा पाव तेवंत मेगा सुपर टैग द अमतरव रुपियाल कोटिये का पाव सुपर टैग सहा ग्रैंड सुपर टैग द सुपर रिमोट रत्या एनएलबी

गजकसू ट्रेडिशनल दिश ज्ञानन वहंसी गंपुल मीथलाव कोहमन रुवनपा मूल महाविहाराधिपति पूज्यपाद गणेश कुमारी शांत स्वामी वहंसी।